0: रियल कूल
1: मैन। बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Oh, अरे कोई सांस तो छेड़ो झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू
2: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं एक्टिंग करके बताओ

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ,

दास प्लेइंग फॉर न्यूज़ एफएम केनिस प्रीमियर एशियन मिक्स. दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल. एंड हम बात कर रहे हैं अबाउट यू नो हाउ कूल वर यू इन स्कूल एंड व्हाट वाज दैट थिंग दैट मेड यू कूल. सो द अल्टीमेट स्कूल स्टेटस सिंबल. सो बिफोर स्मार्टफोन्स देयर वर सिंपल वेज टू बिकम द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन इन स्कूल. Sometimes being cool came down to having something everybody else wanted. Maybe it was the newest football, the fanciest pencil case, imported sweets and chocolates, or enough pocket money to buy snacks for your friends. You weren't rich, you were just carrying enough snacks to qualify as a small supermarket. So, कौन सी ऐसी चीज है that made you feel cool in school? I've got a message from Jayshree. She goes on to say that bell bottoms, and I'm sure this was one of the most amazing fashion sense. And मेरे को एक चीज है, मैंने भी I own a bell bottom. I still own couple of them, and मैं पहनता भी हूँ. And I think these suit क्या कहते हैं, जब आप bell bottom पहनते हो ना, एक अलग ही feeling आती है. And I love that. I love bell bottoms. And इसके ऊपर एक movie भी आई थी, starring Akshay Kumar. And I think it was a good movie. So let's get into the translate challenge. जहाँ पे आपको मेरे को एक movie देनी है, and I'll tell you the movie in English, and you have to tell me which is this movie in Hindi. In English, it sounds like this. It's a one-word movie in Hindi, and in English, it sounds like this. Separation. Separation in Hindi. याद रखना आज थर्सडे है, तो थोड़ा सा थ्रोबैक हम करते हैं, हम हमेशा थर्सडे को. सो कौन सी मूवी है ये सेपरेशन, सेपरेशन इन हिंदी. यू कैन सेंड मी आंसर्स ऑन 0701106106 और यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 0711046106.